0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: जिंदगी सूरत सफर है. जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है. लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं. ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो. और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है. हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है. ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं. उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है. चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में. यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है. क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है. अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941. आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान. हैदर मोमिन होम्योपैथिक

0: जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ, हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
1: तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान। मदरसा दारुल कुरान व सुन्ना लिल बनैनी वल बनात, मोहल्ला तौहीदाबाद गाँव पिनकाणी नजदीक जामे मस्जिद तौहीद।
2: जमुन को मदरसा के सहर दशपगु बजो नवाखला तर गर्मी दुल सुबजो पूरे जनानो तालीम और हमदगशान ददरु बजो नवाखला तर माखाम पूरे नारिनो तालीम को दिलिशी चिपाहे की कायदा तर्जुमे कुरान नाजर कुरान हिफ्ज़ुल कुरान और दर्जी उलाना द दौर हदीस पूरी किताबुना को दिलिशी जेर निगरानी मोहतमिम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सैब और नाजिम साबिर हनफी से। कॉन्टेक्ट नंबर तौसीफ अहमद खाकसार 0315-6386-080। मुफ्ती मोहम्मद नाहिद से कॉन्टेक्ट नंबर 0314-06-93-596। नुहम उस राशे कुल औलाद ना दा दुनिया हम खेस तकड़े और आखिरते हम खेस तकड़े मुंसरा दाखिली शुरू दी।

0: तीसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हम
1: ये रेडियो दिलवर सवाबी है और आप रेडियो दिलवर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी।
2: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
3: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
2: रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
4: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
2: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह दिलबर FM 94 स्वाबी।

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।

0: आज ये प्रोग्राम बल्ले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। मास्टर रसूख तू द कम से ना
1: जोहान खबर कुम द पीपल ना काटी काटलंग
0: जोहान द काटलंग जोहान द बिलडोना एंटी हर फाल शिंपू की मत स्टाप ख्याल सुमर दे
1: ₹550
0: दे सा प्रोग्राम और रेडी रे मेहरबानी मुंसर जोहान रा गई जोहान वही द बेलडोना एंटी हर फाल शिंपू की मत द जोहान पे खेल ₹550 दे जी दादी प्रोग्राम बल्ले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो

0: सुमैया दसुआत सवाल जवाब बिल्कुल गलत सायमायम तो गलत अभिरत पिशावर गलत मोसिया यानी पूछो गई सवाल जवाब बिल्कुल ठीक है रे थैंक यू राजे ददी प्रोग्राम आखिरी कालर मोहतरम इसमिनी नमूना रवलीगा चाची द मैसेज दलारी सही रही गली अगुई नमूना पकी बोली को चाची द काल दलारी सही रही गली अगुई होम नमूना रवलीगा जी राजे ददी प्रोग्राम बल्ले कालर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातुह रेडियो बंद करी प्लीज माँ सर खबर हो गई अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी मेहरबानी माँ सर सूखती हो दम से ना
1: हाँ दशरी बार ना बारे ना
0: नो गुस्सा दे हेलो
1: हेलो हाँ
0: या वेट क्या नुम दिस्सा दे
1: रेहान
0: रेहान संग गई खाई
1: एर दे वाला
0: खास संग प्रोग्राम हो रही कना प्रोग्राम ना आ रही
1: ना आ रही
0: खजान ले आ रही कना नोर सुख दर सरस्ता
1: टोली
0: संग नो तबा निजम प्रोग्राम खस्ता लगी कना खस्ता न लगी
1: खस्ता लगी
0: खबर चिस्ता निजम प्रोग्राम खस्ता लगी पदे प्रोग्राम की माँ दा सवाल करी कम नवे शैम्पू दे बेलडोना एंटी हेयर फॉल शैम्पू आया दीदी कीमत सुमर दे नुपागे की मुंगा था सिर्फ और सिर्फ या वो सो कसानो जवाब टीक राको चेगुई दारे चीज द बेलडोना रेगुलर शैम्पू कीमत 550 रुपए दे नु द एक नवाल तर 11 पूरी कम यो कूपन नंबर पोला कम यो नंबर कम यो कम यो बुक्स को लाकुम दे एक नवाल 11 पूरी चितमा त यो बुक्स याद का चिपागे की द चा नुम हम भी अगे तब द बेलडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान द तरफ नमंग इनाम और को द एक नवाल तर 11 पूरी कम यो को लाकुमा
1: इन द नीम सवा
0: पिन सिनीम सवा देखो कम यो नंबर बुक्स को लाकुम द एक नवाल 11 पूरी कम को लाकुम दा से रतु आया
1: नो कान का नाम बार दे
0: द एक नवाल 11 पूरी पेजने कन पेजने
1: एक
0: एक को लाकुमा एक नवाला 11 पूरी

कीमत समझते हैं या उस टाइम उसकी समझ में मतलब ये एक चीज आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत टाइम गुजर चुका होता है। देखिए मेरी बात सुने, एक तालिब इलम जो है ना इम्तिहान के बाद, एक बीमार सेहत खोने के बाद और एक इंसान अपने प्यारों से बिछड़ने के बाद वक्त की असल कदर को समझता है। जो लोग मतलब ये ना कि जो लोग वक्त की टाइम की कदर करते हैं वो भी उन्हीं की कदर करते हैं जी। जो मतलब जो है ना वक्त की पाबंदी करते हैं, वक्त के पाबंद लोग दूसरों का एतमाद जीत लेते हैं, साथ साथ कामयाबी उनके बहुत ज्यादा कदम चूमती है, लोग उन पर भरोसा रखते हैं, भरोसा करते हैं, उनकी शख्सियत खुद बहुत जो है ना बावकार बन जाती है। छोटे छोटे जो भी मतलब कोई लम्हे होते हैं या छोटे छोटे लम्हों को अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो यही लम्हे एक दिन बड़ी कामयाबी की एक बुनियाद बन सकती हैं जी। मुंग गमदे नो वक तबस वक्त नहीं वेले नो मुंग बस वक्त तेरो जी आओ सिंग वक्त तेरो जी उस दा खबर अदीज एक गमदे नो टूल दफा रदा फिटकी गम ना लेकिन गमदे दुनिया के खख खलक मौजूद दी जी आ पुख्तो की खबर की का ना सिंग खबर की जी हां दा खबर की जी वक्त ले चुक दिखा और के नो वक्त गमदे वाला दिखा और के या अच्छा जी हम बात करेंगे जी किस हवाले से, हम बात करेंगे जनाब वक्त की कदर करने के हवाले से। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे किस हवाले से जी, ये वाला ट्रैक हमने शामिल नहीं करना, एक खूबसूरत सा ट्रैक आप लोगों के लिए हम नया कोई नया ट्रैक आप लोगों के लिए शामिल करेंगे। ये रफ म्यूजिक के लिए आप सुन लें, थोड़ा सा एंजॉय कर लें।

अच्छा जी, ये ट्रैक एक मरत फिर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बैक करके प्ले करता हूँ, क्योंकि टाइम कम है। तो उर्दू ट्रैक के साथ आज हम मिक्सिंग कर दें, नहीं लेकिन जो है ना पंजाबी ट्रैक के साथ। और साथ साथ फीडबैक भी जरूर हमें दीजिएगा जी, 03072700666 यानी 0307 27006 पे।

मेरे सामने मैं जाते जाते कुछ थोड़ी सी यहाँ पे चंद बातें करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा लिसन्स की मेरे सामने जाते जाते एक बात दिल से अर्ज करना चाहूंगा। वक्त बहुत खामोशी से गुजरता है, हमें महसूस भी नहीं होता कि दिन महीनों में, महीने बरसों में, और फिर बरस जो है ना जिंदगी के एक बड़े सफर में बदल जाते हैं। आज हम मसरूफ हैं, कल भी मसरूफ होंगे, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये मसरूफियत भी खत्म हो जाएगी, ये दुनिया पीछे रह जाएगी और इंसान अपने रब का सामना करेगा। हम सब अपने अपने ख्वाबों में, अपने अपने मंसूबों में, खुशियों में, परेशानियों में लगे हुए हैं, कभी दौलत के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, कभी लोगों के पीछे, लोगों को खुश करने के पीछे। मगर एक हकीकत ऐसी है जिससे कोई बच नहीं सकता, और वो हकीकत है मौत। मौत ना उम्र देखती है, ना मकाम देखती है, ना दौलत देखती है, ना शोहरत देखती है। जब अल्लाह ताला हुक्म करता है ना, या जब अल्लाह ताला की जात की तरफ से हुक्म आता है, तो इंसान को इस दुनिया से रुखसत होना पड़ता है। स्वीट लेसन्स जाते जाते आप लोगों के लिए बस यही चंद गुफ्तगु में करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला जो है ना हम सबको अमल की तौफीक अता करे, और रब ताला हम सबको हिदायत दे। जब कभी भी सवाल किया करें, जब कभी भी दुआ किया करें, तो हिदायत के हवाले से दुआ किया करें, क्योंकि जो लोग जो है ना हिदायत पा लेते हैं तो उनकी जिंदगी तो बेहतरीन हो जाती है ना जी, क्या कहते हैं। आज अगर हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, आज अगर हमारी इस जिंदगी में टेंशनें हैं, तो क्या आया हम अपने इस टाइम का जो वक्त है इसका सही ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है लेसन्स। हम सब अपने अपने अपने ख्वाबों में, मंसूबों में, खुशियों में, परेशानियों में लगे रहते हैं, कभी दौलत के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, कभी लोगों को खुश करने के पीछे। मगर एक हकीकत ऐसी है जिससे कोई बच नहीं सकता, और वो है मौत। जिस तरह पहले बता चुका हूँ कि ये उम्र वगैरह नहीं देखती जी। कभी कभी इंसान सोचता है कि अभी बहुत वक्त है, तौबा कर लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मगर हकीकत यह है कि किसी को ये मालूम नहीं है कि अगला लम्हा हमारे नसीब में है, मौजूद है। अगली कोई चंद सांसें जो है ना हमारी जिंदगी में मौजूद हैं। अभी लोगों से माफी मांग लेंगे, मगर हकीकत यह है कि किसी को नहीं मालूम कि अगला लम्हा हमारे नसीब में है भी या नहीं। इसीलिए बेहतरीन इंसान, धना इंसान वो है जो हर दिन को आखिरी दिन समझकर बेहतर बनाने की कोशिश करे, अपनी जिंदगी को सेट करने की कोशिश करे। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अगर किसी से दिल दुख है तो माफी मांग लीजिए। अगर किसी का दिल दुखा है तो माफी मांग लीजिए। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया तो माफ कर दीजिए। वालदैन की कदर कीजिए, अपने रब से ताल्लुक को मजबूत कीजिए, क्योंकि असल कामयाबी यही है कि इंसान दुनिया से ऐसे हाल में जाए कि अल्लाह ताला उससे राजी हो। सोचने का मकाम है। कहना चाहता हूँ यहाँ पे, और इसके साथ मैं आप दोस्तों से इजाजत भी लूंगा, इजाजत भी चाहूंगा, मेरे पास टाइम कम है। ये अल्लाह ताला उससे राजी हो, सोचने का मकाम है।
میں لیسنز کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ, اور اس کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اجازت بھی لوں گا, اجازت بھی چاہوں گا, میرے پاس ٹائم کم ہے. میں کہنا چاہتا ہوں لیسنز یہاں

मेरे प्यारे सामने कभी कभी दिल अजीब सी कैफियत में होते हैं, इंसान सोचते हैं कि वक्त कितनी खामोशी से गुजर जाते हैं। कल तो बचपन था, आज सिर्फ जाना एक याद है। कल तक जो लोग हमारे साथ हंसते थे, आज हम मौजूद नहीं है, इस दुनिया में नहीं रहे। जिंदगी किसी दरिया की तरह बहती रहती है, ना वक्त रुकता है, ना लम्हे वापस आते हैं, और ना ही गुजरा हुआ कल दोबारा मिलता है इंसान को। और रोमानवी एहसास भी इंसान को यही सिखाते हैं कि जिससे मोहब्बत हो उसकी कदर वक्त रहते जो है ना कर लेनी चाहिए। एक खूबसूरत जो लफ्ज होते हैं ना, एक खूबसूरत लफ्ज, एक मुखलिस दुआ, एक इज्जत भरा रवैया, एक मुस्कुराहट, शायद जो है ना यही वो तोहफे हैं जो हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं। कभी कभी हम सोचते रहते हैं कि कल कह दूंगा, कल मिल लूंगा, कल माजरत कर लूंगा, लेकिन जिंदगी हमेशा जो है ना कल का वादा नहीं करती जी। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में यानी कि ताहिर जमान की दुआओं में आप हमेशा हमेशा शामिल रहेंगे। जिधर रहेगा, जहां रहेगा, खुश रहेगा। अल्लाह ताला जो लफ्ज कहे हैं, जो अल्फाज कहे हैं, उन पर हम सबको अमल की तौफीक अता करे जी। आमीन या रब्बिल आलमीन। खुद का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जहां रहिएगा, जिधर रहेगा, खुश रहेगा। जल्दी पाकिस्तान यानी कि हमेशा रहे पाकिस्तान। अल्लाह पामान एंड लव यू ऑल।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।

0: We'll be back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के, बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम,

0: कृपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
1: खुश खबरी हगा ठोल बीमारान चचा हड़ू की माछी याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी चिदचा दखपो औ दला सुनो गुतो रघुन बन शिवी औ या गुते बेहरकत शिवी औ दचाचे दखपो द कुंडो दनन लाड़ खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगटोली जनाना चिदचा खपे औ लासुना सुनकीगी औ हगटोल मरीजान कमचे दमला दमहरो याद पटो मरीजान हुई याद माशुमानो खपी कगी हुई नु दहा टोलो मरीजानो द पारा द खुशालय खबर उस बाद हरिद्वार पर उस बांधी सहर द अतो बजो नवाखली माजिगर चरसलो रो बजो पोरे द इस्लामाबाद और द पेखबर नुमावड़े डॉक्टर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन डॉक्टर तारिक रहीम सेब MBBS MCPS FCPS एक्स रजिस्ट्रार HMC पिशावर सहर द अतो बजो नवाखला माजिगर चरसलोर बजो पूरी तासो तशरीफ रवड़े से नुपा तैयार साथे बिलाल प्लाजा अलसेद CNG ता महामख कोंडा मोड़ जहांगीरा रोड सवाबी। मजीद मालूमात द पारा याद नंबर अगस्तो द पारा पदे नंबर 0314-15-13-232 यानि के 0314-15-13-232।
2: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगलार शमा
2: ओहो फमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
3: नुदा सिवाया कना
2: शारजा ज्वेलर्स। Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया। जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महा

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: Music and Information Station 94 FM.

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान।
3: मदरसा दारुल कुरान व सुन्ना लिल बनैनी वल बनात, मोहल्ला तौहीदाबाद, गांव स्पिनकाणी, नजदीक जामे मस्जिद तौहीद।
4: जमुन को मदरसा के सहर दशपगु बजो नवाखला तर गर्मी दुलस बजो पूरे।
1: शिफा, दिल से दुआ।
0: हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: गायब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान।
3: मदरसा दारुल कुरान व सुन्ना लिल बनैनी वल बनात, मोहल्ला तौहीदाबाद, गांव स्पिनकाणी, नजदीक जामे मस्जिद तौहीद।
4: जमुन को मदरसा के सहर दशपगु बजो नवाखला तर गर्मी दुलस बजो पूरे।